0: श्रीलंकी रिद्म विश्व सारा लाइव एफएम
1: लंका वेलावें देंग वेलाव दे हायाई एकाई
2: लाइव एफएम